की ब्रह्म न कोई एका घर माठी ए दलित्री अति थिए बालकती न पुत्र उनका आपू दुई दंपति सला।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून के साथ सुनखानी सुनसाना सुदामी की नारी करच बिन भारी विपत्ति ले पति चे ऊंचाई बिनति कर चिंता पिदरले गुरु देवता राजा अर्पण भला मानस का निदान खाली हर बंकन कहुंच ज्योति समान देव के ही सौगर मन दैत चंगा करिकुन मुदन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन बालका ओ जने बालका ओ जगा

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ 16 पक्ष सन 2026 जुलाई 23 तारीख श्रावण 7 गते बिहीबार नवमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पै भरी

राजा नहोस् गाई सारे दौलतले परिपूर्ण होस् पवन जाई नै परेका घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्वल होस् सुत सहित का

बांधन बिरहरुलाई ताही हनुमान हे बिरहो पर तारी सीताजी कन भेड़ु महिले जान्छु बड़ बेगरी पापी जन पनि राम का स्मरणले संसार पार तर्छ त

मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शङ्ख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ धरौ तिस्म सान ननिलौ नागरी गोवर्धन तिरी दक्षे बलि दक्षे।

सोची सब ठीक पारी मन ले लागे अयोध्या देखे श्री अमरावती सारी पूरी आनंद बोहर हर सारा लश्कर लीप से नगर मा चलते बड़ा सोरली